मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी का

अरे आजादी से रहना जब तक जीना है संसार में, अच्छा है जो रहे गवारा क्या रखा है प्यार में।

जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

होता है ये जिंदगी के साथ लता जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। फिल्म नूरी का गीत पेश है

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Hem gewoon jijla gebruik keren. Koffie en chai ke kortingscode tu gebruik keren. Ook er hijga kortingscode hijga John. O hijga 100. 100. Kortingscode John hijga 100. Agar tu kortingscode gebruik keren. Dan krijg je nog een kleine korting erbij. Na bahut barka wali, na bahut mota wali. Ik een mooi pater wali. Maar moeilijk het hoor, elke korting is leuk. Dus toen je abe brassafest.nl, toen maakte Hamar Sangye Chang. Open je mobiel. Toen op een mobiel wat kool, ja to op een laptop kool, ja to op een PC start kar. Dan toch eens samen deed dat. Ga even naar brassafest.nl. Toen maak je dit programma, Lamba Chaura. और तू देखिए टिकट और तू जाइए वहां पे जहां टिकट तू किन सकेगा दा क्यों ये हेल मंकलक ऑनलाइन रेगलन तू होना अपन टिकट किन सकेगा वहां पे और अगर एगो देखिए कोर्टिंग्स कोड एक जगह लिखल बा हमने नहीं वर्ड वाला लिखल बा कोर्टिंग्स कोड की कोनो दूसर वर्ड लिखल बा हो सके एगो दूसर वर्ड लिखल बा मा ओही मतलब आएगा कोर्टिंग्स कोड तो तू इनफिल करिए 100 और तू प्रोफिटेर करिए एक मोई क्लाइन कोर्टिंग मोई लगेगा एंड फॉर द मेंस दी डेंक फन सुनना हमारे खाती इनकंविकल्ड थाईगा हमारे खाती बहुत इनकंविकल्ड थाईगा कोर्टिंग स्कोडो उधर से काम करे के ऑनलाइन की ने के हम ना मंगेला उस चीज़ बा हो सके तो ये हाईगा ट्रॉमन्स ना डायमंड्स के अपनामे एगो उतना मोई अपनामे ना हाईगा हम फिर करेला

रहेगा तो संजना भी रहेगा वहां पे। आई वुड लाइक इफ बाय द डायनासोर हां एक से एक लड़की रहेगा स्टेज पे तो स्लॉट वे इवन अ डे सो लुस्टर सो टॉक इन द मूड साइन फ्रॉम द डामस रानी सर भाई दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं होके जुदा हम ना जुदा हो सके ऑलराइट लाइव ऑन स्टेज दोस्त रानी भी रहेगा मेरी अर्जी मान है मौला तू है सब कुछ जाने वाला मैं हूं तेरा मानने वाला मुझको भी तो लिफ्ट कर हेलो फिल डामस और दी ऑन स्टेज सोलो साइन अब हम सुनीला अब हम गनवन चलाईला Dan drinkt het tot mij door dat er zoveel leuke zangeressen bij zijn gekomen in Nederland. Ik poos er haakjes schaars dat hoor, Arato. Van een goede zangeressen. Maar het is een heel mooi, mooie haiga zangeressen. Zij is uit. Leuk. Zij is erbij.

एरोशाना का नहीं ताली मार हेल मोइ सिंग और सिसो के लीफ कुमार ने बवंद्रे टाइडस ब्राज़ा फेस्ट

बड़ा सा फेस पे रहेगा रोशना भी तो वही खाना बड़ा सा फेस पे इंटरनल एंड स्कोर ये कार्ट इसे बहुत सस्ता हैगा दोस्तों सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है बात ना तू लग दी तो अंदर ही के तो

गीत जो है ना आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे देख ले तो नारो उफर खातर में पर मोयर संजय ऐसा ऐसा कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसा ऐसा कलाकार भी वहाँ आई के ब्रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपके मनोरंजन के खाते। और ये कलाकार जो है ना अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

0: क्या गीत है यार है तो ओरिजिनल इस गवेल्डर बट दिस इज ओक आउटस्टैंडिंग संजय जोता लाइव ऑन स्टेज विद एक्सक्लूसिव टाइडेंस ब्रासा फेस्ट तू आइए
1: बन के कली
0: तू आइए बन के कली

Beautiful. En dan gaan we naar deze toe, hoor. Totaal anders natuurlijk. Andere stijl. Maar het hoort allemaal bij ons. Waar, waar? Aple. Aple, sujal ke tamasa, sujal umrao. Surya ke saath, ye bhi rahege, yaar. Live on stage. En een heleboel danseressen. Na sujal ke saath khali. Met al die artiesten, met een heleboel artiesten. Maar sujal ke sange natuurlijk. Een heleboel danseressen erbij. Na ego, na duigo, na tingo. Een heleboel. Doe je. Het wordt tamasa, het wordt geweldig. Het wordt vuurwerk. Het wordt heel chill. Doe je. Brasa fest. Yes. Sujal ke saath. Tu kahe na aaiye. Hame bol tu kahe na aaiye. Hi batia tu hame uitleg kar. Waarom zou je niet komen? Aap een Hindustani ke evenement pe. Ekdam bitter. To ke dar na hai ga ki barish hoi ga. O to kaha parkeer kar abe. Veiligheid na mooi ga. Na jaar. Ujala ke hai ga. Tu jane ga. Hame log dil lagi na karila waan pe. कोई आएगा वहां पे रोटसोई करे, कोई आएगा वहां पे कुछ करे, कोई बनमासी भी, वेल, तू जाने हम लोग के बात ही तो, तू जानेगा कि कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, दोस्त वहां पे एक को प्रॉब्लम ना हो सकेगा, और अगर कोई मांगी प्रॉब्लम करे भी, तू जानेगा कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, एक को दिल लगी ना, दोस्त तोर फैलखाई एकदम सेती, तोर गाड़ी ऑटो जोन हैगा एकदम मोई से पार्केर करिए नेचर से तो के नहुफ खोजे के गली गली ना हवोन इन द ब्यूटीफुल जिया इवेंट सेंटर भरल है जगह ओपन बार फॉर फूर से तू भी आ सके मैं अपन ऑटो से आ सकेगा देश भर में से दुस नीत आलिंद मेंस और देन हां नहीं तू देख ले गूगल अते इवन जस्ट द वेरफ नंबर 11 देख ले तो द वेरफ नंबर 11 जिया इवेंट सेंटर अदमी जोन सोचे तो कहाँ पे हैगा कैसे हैगा बहुत मोई हाल बहुत मोई लोकांसी अगर हम बोली ला बहुत सुंदर तो तू विश्वास कर ले हमसे अलर मोई तो सबसे मोई जगह एकदम सुपर द लुक्स वहां पे तो वही है हलचल कलक होई हलचल कलक होई साथ है साथ सुजल के साथ

समैया थोड़ा कमती बातो जैसे हम गनवा तो जहाँ पे ऊपर स्नान करे छा सुजल तो के हम लोग देखे बे लाइव ऑन स्टेज ना तुल ब्रासा फेस्ट पॉइंट नल तू जाए के सिटी कल्ले अपन करता है इस साइड करता जो होगा बहुत सस्ता दाम में मिलेगा दोस्तों जाए के कौन किन ले यार रिकल कल्ले चिजवा है वदाखी फन हेमदान ये दे म्यूजिकांत खेलेगा दमिया भी Ai, ai, ai, ai. Hij mag niet ontbreken natuurlijk. Eén van de gezelligste. Eén van de gezelligste zangers. On

on stage. Rasta Vesper. 29 en 30 augustus. Laatste weekend van augustus. Toke avik pariyar. Kaise tuna aiye? Aur kahe tuna aiye? Apan Hindustani ke event mein tuna aiye? To kekar face pe jaiye. Agar tu Hindustani ke event mein na aiye, to kaun event mein tu mange jaiye? Gorkhati special. Den Haag shahar mein. Hila dekhoi hum log. सबसे बरका, सबसे मोई, सबसे खसालक इवेंट उजाला के साथ उजाला वहां पे भी बनाएगा लाइव आउटस्टैंडिंग लाइव कार्यक्रम हम लोग बनावे पनाफन ब्रासा फेस्ट जनहा के वेथ हाउस जोन हैगा भी रहेगा बेल्क वहां पे हम लोग के आसपास और बरका बरका आदमी रहेगा नौया बरका बरका आदमी तू समझेगा हमका बोली ला तो उनका दर्जा है गाला वैसे बोली उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे और तू भी रही है यार तो हूं थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेग पड़ी और हम तो कहो ब्रासा दे पे तू आइए हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार मिस्टर ब्लैक या तो मोई गाना है यार रहेगा भाई चलिए सुने ई कौन सी है गा इके हाईगा हम बताई सकेला तो के निजाम वाकित हुसैन द लेजेंड्स के साथ

0: लाइव ऑन स्टेज, बड़ा सा फेस्ट पर यार तू आइए, समय कम है तो हम जाएला जल्दी जल्दी नंद फॉल हंदर आई बोई एक अपना हमारे सही फॉर्मिनिचर्स मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस एहू रहेगा यार ना तू लग मुकेश
1: तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
0: ओह यस
1: तुम्हें अपना बनाने की
0: तुम्हें अपना बना कर हम रहेंगे यार
1: खाई है
0: बात खबर देना
1: आंखों में चाहत ही नजर आई है
0: En als je hem hoort zingen, hè, zou je bijna denken dat het iemand uit India moet zijn. Uit de Mumbai filmindustrie. Maar gewoon Hamlokke, ja, Hamlokke eigen.

गमी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रियनी खंतखियार और लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा परनाना और स्वर्गीय श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति दीमन जैत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सभी लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रियनी खंतखियार और स्वर्गीय पत्नी श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, दीमन जैत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल इतवार के दिन में 2 बजे से 3 बजे तक मोरखन जोंदख में दफन त्वे तो द्री उर उत्फार सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 बजे वोंसदखांस्टांद 1 उर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उदित नारायण और साधना सरगम जी।

पहला नशा पहला खुमार, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम से आप सुने जो जीता वही सिकंदर। हाँ, फिल्म कसूर का एक गीत

और मोहब्बत हो ना जाए। कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म कसूर का गीत। उजाला रेडियो है और जानकारी चाहिए आपको ना तो वेबसाइट पर आप देखें ujala.nl।

में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

है हमारे दरमियान, ऊ जी सांसों की गर्मियां, लेकर जैसी बीच से थी देश सॉन्ग सॉन्ग तो नीति मोहन अफकोम से खैर फिल्म यारा सिली सिली ऊ जाना रेडियो है ये दोस्तों, वहां योग बेंट ब्लेव लेकर खरीदे फाइन योर रेडियो। एक से एक खूबसूरत गीत एंड सो ऑफ देश सॉन्ग एट द फिल्म जैसबा बंदिया तू मुंह मोर के ना जा।

रुक जा रे हम जा रे बंदियां तू मुंह मोर के ना जा। क्या खूबसूरत गीत है ये दोस्तों, खुजों का दौर जुबिन नौटियाओ और फिल्म जज्बा। सुन वालो, यह है आपका उजाला रेडियो जो आपका खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है स्टूडियो देन हाग से। और चलते चलते हम आपको ले चलते हैं अगला गीत की ओर, एक खूबसूरत गीत एड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव एट द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर. एक खूबसूरत शानदार लव गीत सुनवा लो. एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं. Geniet van de dag, geniet van elk moment. En doe dat samen met je favoriete radio, Ujala Radio.

0: तुझे भी पता मुझे भी पता, ये जो भी है दिल की है गलतियां। It is the solo version of the song Yada Teriya, gezongen door Mr. Rahat Fatih Ali Khan, gebracht uit de film Hero.
1: Yes! A new fire tune.
0: यह है आपका उजाला रेडियो दोस्तों, जो हर जगह हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हूँ आपका सेवक अमित जयराम, और एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं ये शो फनाइड स्टूडियो इन देन हाग।
1: फुल इफेक्ट टॉप शॉट दिस इज बॉक।
0: Geniet lekker van je dag. Geniet van heerlijke lekkere songs. Zo ook met deze van de bandformatie Daisy Crew Holland. Gietka naam het Toe Hemerie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

गाना फील गुड फ्लेवर हम लूट गई सलीमा के तेरे मोहल्ले ममता शर्मा एंड ऐश्वर्या निगम. फिल्म का नाम है बेशरम. मैं रणबीर कपूर आज बबली है इज एन ऑटोमोंटेर है वोंट इन एन वेसहाउस इन दिल्ली एंड है इज एन एक्टे एक्टे एक्टे लेवेंसगेनीटर एंड ओम सैन वेसहाउस फिनांशियल टू ओंडरस्टेनन स्टिल्ट है ऑटोस एंड दैट इज दिस रणबीर कपूर सामे मेट पल्लवी शर्दा एंड ओक ऋषि कपूर स्पीलट इन द फिल्म बेशरम. रिलीज डेटम वाज 2 अक्टूबर 2013. Alweer een tijdje geleden. Maar nog steeds leuke herinneringen aan de film Besharam. Tijd voor een Punjabi flavor. Uit het jaar 2019, de stem van Maninder.

0: तेरा हो जाऊंगा, तुझ में खो जाऊंगा, खो के मैं तो यारा। क्या गाना, फिल्म का नाम है पागलपंती। तेरे आबे मार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। और आवाज है असीस कॉल एंड जुबिन नोटियाल। Enjoy the Moi Moi Gana, Ujala Radio, keeping you on the move with your best friend Amit Jayaram. Het is tijd voor de stem van Tony Kakker. In deze heerlijke single song release Gana, organica naam hai Dhime Dhime.
1: Gori ke

मस्ती में मस्त हो जा। इस हिलके सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना द स्टेम वन टोनी कक्कड़ इन धीमे धीमे धीमे धीमे और फिल्म बाला प्यार तो था एविचेस एन लव सॉन्ग एन हिलके लव गाना आप सभी के लिए एंड नीट अलेन स्पेशल फॉर द लवर्स बट फॉर इधरेन।

कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा, यह गाने का नाम है कैसे हुआ एंड दैट इज वेयर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग आउट द फिल्म कबीर सिंह। सिर्फ ब्यूटीफुल खूबसूरत गाना हियर बाय द वन एंड ओनली उज्जाला रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। Zo zeggen, geniet lekker van jouw heerlijke radiostation. Geniet lekker van deze heerlijke dag. Je weet het, you only live once. Live it up every day. Uit de film Arakshan uit het jaar 2011. Ook weer een Ghana om nooit te vergeten. Ghana kanaam he Achalagata.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

तुझे जितना मैं प्यार करूं यारा किसे और से ना किया दिस्टेम फन अरिजीत सिंह असम में प्रिया शराया हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो हिल का गाना आप सभी के लिए eventjes terug naar het jaar 2007. De stem van Himesh Reshamiya. Organa's naam is Meri Awargi. En dit is de remixversie.

मेरे आवारगी मेरे दीवानगी तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम दिस्तम फनी मंदिर दान हिमेश रेशम या हीर बैरवान नौली उजाला रेडियो जहां भी हो आप वचो का दूंगेंत

सात बजकर 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 15 तारीख और वो भी अगस्त साल 2026। बहुत सारे हफ्तों के बाद आज फिर मौका मिला है मेरे प्यारे सुनने वालों आपका सेवा करने का, और मैं वादा करता हूं आज आया हूं एंड आने वाले 8 हफ्तों के लिए लगातार सभी दिन जो हम प्रोग्राम बनाते हैं लगातार हम आपका सेवा करेंगे। तो सभी को रतन तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। आप सभी को शुभ रात्रि कहते हुए आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदापर्स हैं। शुभ वीकेंड, खनितवाई वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों। और आजकल मौसम का हालात तो बहुत खूबसूरत है, कुछ लोगों फकांसी बीत चुके हैं और बहुत सारे लोगों का फकांसी अब भी चल रहे हैं। जिस तरह से हो और जिस तरह से भी हो आप एंजॉय करें। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे से नौलो पेश करने जाऊंगा बहुत दिनों के बाद। 5 घंटे लगातार आपका सेवा करेंगे हमेशा की तरह, अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक, विद ब्यूटीफुल लोकल्स मेरे प्यारे से नौलो। और बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं और बीते हुए महीनों के भी कुछ गाने हैं जो हमने चलाए नहीं अभी आप सभी के लिए। आज जो भी चलाएंगे इनर फालसू फिल्म मुखलक I-20-26 और खास करके ये महीना अगस्त का। मेरे प्यारे सुनो, इस प्रोग्राम के दौरान आप सभी को तो मालूम है, जो लोग सुनते आए हैं हमारी ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, जितने लोग भी ऐप करेंगे स्टूडियो में, आप ये कश उठाएंगे ऐप करने के लिए स्टूडियो में, तो आपके नाम से हम गीत एक लोकल अपने प्लेलिस्ट से निकालकर आपके नाम से चलाएंगे। देखो इसे साइन फॉर मै खेन टिटल्स दूर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि विलियन स्नेलर नंबर और वरिष्ठ नंबर तो जाने दो। और आपको ऐप करना है, अभी से आप ऐप कर सकते हैं 020-363-0800 स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर है। और मेरे प्यारे से नो लो, गाने हम 8 बजे की इश्तिहारों के बाद सेवा में पेश करेंगे, जो ना द क्लॉक फन 8 यूर ना द कमर्शियल ब्रेक फन 8 यूर। देखेंगे कि कौन है जो ऐप किए हैं, तो उन सभी के नाम से हम गाना चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। जो स्वीत ईर्स्त कुंत तू जाने चीजवा कैसे, तो देरी से आप ऐप करेंगे तो देरी से भी आपका गीत आएंगे मेरे प्यारे से लो। वो तो छोड़ो, आपको तो मालूम है हमारे ये प्रोग्राम के दौरान जब भी हम प्रोग्राम स्टूडियो में आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतनाम से, हमेशा आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं अब 020-3-9-9-9। और रही दफ्तर की कार्यवाही मेरे प्यारे से नोलो, तो आप व्हाट्सएप बिल्कुल ना करें, दफ्तर की कार्यवाही दफ्तर में होता है, धार्मिक आने क्यों नीत हेल्प तू जाने तो। तो आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे दफ्तर को तार कर सकते हो। आपके फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे अब 020-409-0807 या तो लगातार 24 घंटे आप मेल करें info@ujala.nl। और अगर आप मेल करेंगे नमाक इतनी आयत, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, कहीं आए उजाला रेडियो आप फरमाइश दे सकते हैं, जरूरी खबरें दे सकते हैं, मौत की खबरें भी दे सकते हैं, दैट कैन ऑल विया द मेल info@ujala.nl।
और मेरे प्यारे से वालों सोशल मीडिया पर उजाला रेडियो भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और नेटवर्क यूट्यूब पर जोड़ जाइए हमसे और फायदा उठाइए खबरों के साथ जो हम वहां पर छापते हैं। आप आसानी से पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे या आप शेयर कर सकते हैं ये खाना दिल ये भी तो खाली देंगे स्वच्छ कानून में दी बरेख्त। लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उजाला रेडियो को सोशल मीडिया के साथ। तो मेरे प्यारे सुनो, अगर आप सभी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, बेचैन हूँ, इतने हफ्तों के बाद काफी बेचैन हूँ आपका सेवा करने के लिए। और आप लगातार व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, 020-363-0000। और हम पेश करेंगे आज का ओपनिंग सिलेक्शन विद अ ग्रेट ऑर्केस्ट्रा ऑफ हमारे भारत देश, जो आज अपना इंडिपेंडेंट डे ऑन अ फंकल साइड दाख भी मना रहे हैं। तो सभी को बधाई या शुभकामना।

या जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम हो चुके होंगे कि ये था एक लंबा चौड़ा मेडली विद ऑल शमी कपूर सॉन्ग्स और ये हमारे भारत देश का एक ऑर्केस्ट्रा है द तेजस एंड मिताली कलेक्टिव और आज हमारे भारत देश हाँ जी भारत देश का इंडिपेंडेंस डे है ओना फांगल साहित तो सभी प्रिय सुनने वालों को बधाइयां शुभकामना जय हिंद फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों चार मिनट बाकी हैं सरे सात बजने में लाइव एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से बहुत हफ्तों के बाद मौका मिला है आज फिर प्रोग्राम सजाने का सैटरडे नाइट फीवर हेर लक प्रोग्राम में द मोई लोकल्स जो हमने चून चून कर चून चून कर लेकर आए हैं लगभग 400 गाने आज की प्लेलिस्ट में शामिल हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों अमरीचस फान त्रिंतख सेशन त्रिंतख एंड खास करके ये महीना का नगमाएं जो रिलीज हुए हैं पेश करने का और ज्यादा से ज्यादा तो चलता नगमाएं निकाला गया है रिलीज हुआ है और उससे हमने शामिल किया है प्लेलिस्ट में एंड नैचुरली कैसे नोख है लबुन खान फोरग मांड जो हम चला नहीं पाए हैं कारण ये है कि मैं नहीं था बहुत हफ्तों के लिए तो बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर और इस गीत के दौरान इतने सारे लोग ऐप कर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों कि आपको ये भी मालूम रहे कि अगर आप अब से ऐप करेंगे या दम से त्योरी से नीति नत ब्लॉक के फन आख तो नहीं है मार होक्स वर्ष है लग इन नत ब्लॉक के फन तीन तो सॉरी नीख तो तीन हाँ जी आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं मेरे प्यारे सुनने वालों 020-363-0800 तो आप सोचते होंगे एक है हालफ आख है पिक मैं एपी खस्तूर अब बे हालफ तीन होई गया मर गनवा कैसे ना आयल omdat ik het doe op volle gorde van binnenkomst van de appjes. Or kono kono gana chota hai, kono kono lamba hai. Tu jane toch. Sab teri meri hai. Kono kono gana sandopi hai. Or kono kono gana itne lamba jese bonus tag. Jo log is waqt kaam par hai mere pyare sunne walo. Dil laga kar kaam karna. Het is eigenlijk geen weer om te werken, want het is warm, hè? Maar het is vergeleken met de afgelopen twee dagen, aan het thora sa cooler tha. Aur Rotterdam shahar mein barish bhi hua hai. Aur kuch orchestra bhi baje hai upar, dhamake daar wala. Fotograaf bhi raha, kuch chamakta foto bhi banaya gaya hai, chaand se. En dat maakte het een stuk koeler. Kyunki hamari is desh ko chahiye pani. Hai na? Jerry Khayyam, mere pyare sunne walo. Ek urban mashup jiska title hai Naina, pesh karne ja raha hoon. 020-363-0800. Jahan par aapko hi hello karne hai WhatsApp ke zariye.

This is the Chutney Queen from Trinidad and Tobago, Savita Singh ji. और आजकल हमारे इस देश में काफी है उमोरे सजना मेरे प्यारे सुनवालो बुलाते 36 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ आख मेरे प्यारे सुनवालो सर 7:06 गुजर चुके हैं आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनवालो यू आर के स्टूडियो रोटरडम से लाइव प्रोग्राम बहुत हफ्तों के बाद हम सजा रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स और बहुत सारे नए गाने हैं इसमें हैं लोकल्स उम्मीद और आशा करते हैं कि सुनते वक्त आप काफी मजा ले रहे होंगे द फ्रमासी फ्री स्टाइल फ्रॉम सूरीनाम पेश करता हूं नीलम माटादिन और सुधीर सेवदत्त जी

सुधीर सेव तत मेरे प्यारे सुनने वालों और नीलम माटारिन जितवास फरमासी फ्री स्टाइल और कुछ इतनी निपोप हो जाए मेरे प्यारे सुनो क्यों क्या ख्याल है 02-3639-9 यहाँ पर आपको ऐप करना है अगर आपको चाहते या आप चाहते हो कि आपके नाम से मैं एक गीत चलाऊं फोन ऐप स्टूडियो में था हेलो एक बेन हिप एन एक ऐप फनदार एंडार बस यही काफी है Maar oké, je mag ook aangeven, je wilt een rustige nummer of natuurlijk een snelle nummer. Dat maakt het voor mij ook makkelijker. 020-363-0808 Organe ham aarte bajeke baat appers ke liye chalayenge. En als je nu gaat appen, dan zit je in het blok van 9 tot 10. Aapko malum rahe. Rihanna, mere pyare sino walo, apne jawani ke baare mein kuch gaayenge. Aap logon ko batayenge. Meri jawani...

0: अशा ही मानो मेरे प्यारे सुनने वालों, ही रानीवार सैटरडे नाइट फीवर में मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार का ये नगमा।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
0: इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज किंग सेलेक्टा एंड डीओजी 020-363-0000। स्टूडेंट एपीए से हाय हेलो, तो आपके नाम से भी गीत हम चलाएंगे।

King Selecta, मेरे प्यारे सुनो लो, King Selecta NDOG डिप्लोमेसी टू फेमस। ये पहला जो घंटा है निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनो लो, सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे का ये प्रोग्राम का पहला घंटा निकला जा रहा है। अंदर है सोफल मेंस और नोटिस ऐप कि जब आप ऐप करेंगे इस वक्त स्टूडियो में तो गीत तो हम चलाएंगे आपके लिए जरूर से जरूर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन फोकन ब्लॉक में आपका गीत हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि 8 बजे की इश्तिहारों के बाद, लामत खुद से इश्तिहारों के बाद लोगों के लिए जो ऐप किए हैं हम एक लोकल चलाएंगे और ब्लॉक 8 तो 9 एकदम भर गया। एन वैसे न्यू ब्लॉक 9 तो 3 आनंद फुल, तो आप भी चाहते हैं कि उस ब्लॉक में आपके लिए भी मैं गीत एक चलाऊं। En je mag aangeven, het mag een snelle nummer zijn of een rustige, alleen geen titels. Vooral de nieuwelingen, of voor het eerst app kringen. Geen originele songs, of geen titels doorgeven. Alleen je naam, of je gaat ze app kringen, of je hoort, ik wil een soul of je wilt een chelta. Ziek hè? 020-363-0808. तो क्वीन रहाना हम लोगों ने सुना, अब क्वीन जो है निशा, और क्वीन निशा इज रियली ऑन फायर। पेश करता हूं

Ja, Queen Nisha on fire. Ja, on fire की off fire. ऐसे कुछ होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों. इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्रिय सुनने वालों. और इस गीत के बाद ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के उस पार. एंड नेचुरली लगातार आप ऐप कर सकते हैं 0283639899 पर.

Yeah, that was The Lion of Baitagana, Devendra Singh Sivnat. Mere pyare sunne walo. Chauda manit ho chukal hai aur beet chukal hai 8 bajkar. Ja, het is 14 minuten over de klok van 8, mijn pjaar is in allo. Vier ik baar, tehdil se aap sabhi ka hum swagat karte hain. Ek shubh ratri, shubh weekend, shubh shanivar. Aur shubh shanivar, tune kiye ho aap UR par. Jahan par program Saturday Night Fever page ho rahe hain. Bahut hi haftoon ke baad. Aur dil aapka hum behlayenge ratri mein 12 baje tak, tu jaane hai to. वाडा के मुताबिक यहां से एपर्स के नाम से गीत हम चलाएंगे विल्टियोग डटिक नामंस आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं dan moet je inderdaad wel gaan appen naar 020 363 0808 020 363 0808 आप ऐप करेंगे आपका नाम फरमाएंगे आप कहां से ऐप कर रहे हैं एंड नेचुरली आप भी हमसे कहेंगे कि हम मांगिला एगो सोल गाना कि हम मांगिला एगो चलता गाना बस यही काफी है मेरे प्यारे सुनने वालों दैट इज ही विस्कुंड बाय नोडिग तू जाने तो और आज का पहला नगमा पेश करने जा रहा हूं रोटरडम शहर का भैया जॉनी कालीचरण जी के नाम और या भैया लुइके वकेंसी गात वेल कोर्ट maar wel genoten. Aur hum dekh rahe hain wo din jab bhi hum fir wapas jayenge vakansi se lekin uske liye mujhe thoda sa ghodna padega kyunki planning ke hisab se to abhi wo din nahi aayenge bhaiya Johnny Kalicharan oi Rotterdam enjoy you are enjoy Saturday Night Fever enjoy ye nagma जो आपके लिए हम चलाने जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए

Ja. Amrish Prasad, mere pyare sunne walon, with the formation freestyle. Hamare Gayana ji ka ek singer hai. Amrish Prasad. Ye Ujala Radio hai, mere pyare sunne walon. Aur jitne log bhi app kiye hain, 02-363-0008 par Ujala Radio ka WhatsApp ka jo number hai. उनके नाम से गीत मैं चला रहा हूं और मैं देखता हूं अपनी लिस्ट पर देनहाग शहर का उषा जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय योर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और लेडी या लेडी संजना जी की आवाज में गीत हमने तैयार करके रखा है द लेजेंड का एक नगमा संजना जी ने गाकर सजाए हैं मैं उषा के नाम करता हूं अर्धनाथ

ऊपरी तुम प्यारे तू कहाँ बसते हैं, मोहे रगड़िया दिखा जा। लेडी संजना जी की आवाज, ओरिजिनल नटुलक फ्रॉम द लेजेंड रामदेव चैतू जी, उस्ताद रामदेव चैतू जी का ये नगमा। और मैं देखता हूँ प्लेलिस्ट में एक दो लोग और गाए हैं, देखते हैं कैसे प्रोग्राम आगे चल रहे हैं। तन्वी वही दंदरा एक नोखन फेरसी इरफान, और तो जाने चाहिए कैसे हुए, तो जहाँ एक गाना पॉपुलर हुए तो सब कोई गावे लगे। इधर इन मुतत सिंह भैया, ठीक सरे 8 का वक्त है और मैं आगे ले चल रहा हूँ प्रोग्राम को। थोड़ा सा इस मौसम में कभी कभी ये मन करता है फारक करने के लिए।

तो थोड़ा सा फारा हम करें और हमारे साथ जो है फारा करेंगे रोतनाम का नताशा और राकेश जी। राकेश जी मोयवेर में अपन टॉयन में बेसखबा है फिर भी करे हैं एंड फॉलोइंग वीक सी एक रिजल्ट। एक बैम बन्यूट नाउ खनित ऑफ यूली फाइन यूली वीकेंड नताशा जी और राकेश जी। Enjoy you are. Enjoy Saturday Night Fever. En vaar heerlijk het weekend door naar het nieuwe week toe. Rick Gidou, Rogelio Alberg, Mirpia de Senuala.

वो कभी ना जाने कैसे गोसेमान जिए। भैया सोलांगत खुद खात गए तो हम भी जाला। दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ जाता हूँ, कैसे बोला कथिया लगावे तो समुंदर पर, तो देखिए चिजवा कैसे जाए। तो अब हाफन से कि डॉक से कि जैसे चिजवा बोले काद से, तो अब धीरे धीरे तू फार करिए तो तब पनिया कुछ ना है रुस्तक है तू बैठिए कभी कभी तो तू सोचे भाई मांग लाओ को तमा हम रोकनी तो मार पहले तमाकू करत रहली यही फिलियार तुरख दुनवा से एक नोख यौंग अनजान एनन ने क्या लेकर बीच मोईवेर। लेकिन भैया जहां तू गए तनी बीच समुंदर पर और हल्फा वल्फा मारे लगी वही तो चिजवा जा है पुक पुक ये वेल नी मेर कतिया लगावे बोल फेंक चास नेत और चली भागिया जाए वेर तुरख ऐसे बोल जाए अपखे में मैं सो हो जैसी थाली में वाटर ऐसों सी ही लमाल खे वाटर इधर पुहारे से तो वाटर नीचे तक के तेरे नीचे पनिया है तो हम दुई ढाई कर ली तो बोले ना भैया ये हमारे ja ik hou wel van hengelen gewoon lekker aan de kade zitten of op een rustige water doe jij net toch Suriname met Blommesteyn Merwa daar is leuk kijk tukunari ik eet het niet ik eet geen vis maar mooi lekker katia lagawe mooi lekker or kabi kabi piranha bhi aave or hua die Bosland Creole eten dat wist ik niet. En het is een keer gebakken. Maar die jalbazi met bakab hel, dat je jwakab hel, hek je buitenkant bruin bel. Lekin bitra begaar naar houdt. Dan kalili. Maar gelukkig, waar de vakantie is er echt niet. Natuurlijk, ik doe je goed, ja nee, ik pek, doe je pek. Ojadra. Dan kon je het zo wegspoelen. Maar het was niet vies op zich. पिरानिया जैसे को बड़का कुर्बिया तो लेकिन हमें भैया माफ कर दो मैं खो अल्फा फार जब भी जाता हूं एक देश जहां पर मोख लिखाए थे फार करिक डन खाए कालते तो अल्फार मैं खूब खेन स्पीड बहुत अख्तख दिंग्स की ऐसे हल्फा मारे पाच पाच जाने तो ना एक खूब खेन सेंसाची सेंसाची से पिकल मलाल खात हमारे देश पर नाम है अम्सदाम सेंट्रम में जो रहते हैं रिया कल्लू जी आपके अभी आए एन रिया ये भी लमाल खलाएक पोर लेकर खनीत फानत लेव मजा ले इस जीवन का कल किसने देखा है भरपूर आप एंजॉय करें फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि आप एंजॉय करें उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर और खास करके रिया जी ये नगमा जो आपके लिए मैं चलाना जा रहा हूँ एंजॉय योर वीकेंड एंड थैंक यू फॉर योर एपिया कविता सुखू मेरे प्यारे सुनवालो।

kvíták, cukumir, pěresinolo, men formácii, entu, the band, tyraneša, hirleka bačata, hirlekom hirop te dance, mají mu te duel vít, kejsi. Wanta gar ganua jai London or tour stepuan jai Tokyo. Tada moy lagi tu. Ye ujala radio hai mere pyare sinwalo aur ghari ki taraf agar main dekhu dan is it 14 minutes over the clock van half nine. Sare 8 bajkar 14 minute guzar chuke hain. Weekend hai, shanivar hai. Aap bharpoor enjoy karein. Aur main dekhta hu waqt to kuch aise hai ki शायद मैं दो नगमाएं लोगों के लिए पेश कर पाऊंगा daarna is de tijd te kort voor een volledig liedje maar we gaan kijken hoe we het gaan lappen आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं मेरे प्यारे सुनो वालों तो आपको ऐप करना है 020-363-0808 geen titels doorgeven भैया तू जाने है तो अब बोलिए फन तू मांगे गनवाओ गनवा ना ना ना अच्छे सलामाल लोकल्स और जैसे मैंने कहा लगभग 400 गाने हैं आज हमारी ये प्लेलिस्ट में और उसी में से गीत हम निकालेंगे आप तक पेश करेंगे बहुत सारे नए हैं कुछ पुराने भी इसमें शामिल जैसे भी होंगे सेवा में पेश करेंगे Even kijken naar wie we gaan nu. Ha, Amstelveen की ओर हम आपको ले चलेंगे वहां पर भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्यारी समधिनिया हमारी सुशीला चंद्रिका सिंह जी हमेशा जब भी मौका मिलता है चून किए करते हैं उजाला रेडियो पर और हमेशा ज्वाइन करते हैं उसके लिए दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम आपको कहते हैं एक गीत हमने तैयार करके रखा है एक पुराना नगमा है जो फिर से सजाया गया है रविंद्र शिवनाथ और सविता सिंह जो आजकल एक खूबसूरत म्यूजिकल जोड़ी है ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे सुशीला चंद्रिका सिंह जी के लिए आई एम सेल्फी

100 साल पहले मुझे तुमसे बस प्यार था और आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, जो फिर से गाए हैं, सजाए हैं, और वो भी द लायन देवेंद्र सिंह सिवनाथ और द क्वीन, द चटनी क्वीन ऑफ ट्रिनिदाद एंड नॉट अदर देन नटुलक सविता सिंह। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस आखिरी गीत के बाद खावाना द ब्रेक फन नीहूर 9 बजे के ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे, और उस ब्रेक के बाद और भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं? डन कहीं लगातार कहीं खून एपिस्ट्यूर 020-363-0008। हाय हेलो, क्यों नाम, कहां से आप एप कर रहे हैं, बस यही काफी है। आखिरी गीत हिर एंड्रू और चित्रा जी के लिए एटमार सबरुक डंक यू लिवेल आपके एप के लिए, एंड खनीत फाइन वीकेंड, खनीत फाइन यू आर एंड खनीत फाइन डे सॉन्ग।

या नीले नीले अंबर पड़े चांद जब आए प्यार बरसाए और हमको तरसाए। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमा 13 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 9 बजकर। वक्त तो इतनी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं मेरे प्यारे सिनेमा। 5 घंटे का ये प्रोग्राम में भी लगता है मैंने शुरू किया है और देखो ना 3रे घंटे में मान पड़े हैं। रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। मैं हूँ रतन राम लाड़े पांडे और स्वागत करता हूँ आप सभी को। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है हमारी इस देश में और ना जाने आप कहाँ कहाँ सुनते होंगे। शायद अभी सूरज वहाँ उगने लगे हैं या दोपहर का वक्त है। जहाँ पर भी होंगे आप, जिस हाल में होंगे आप, तहदिल से स्वागत हम करते हैं। सैटरडे नाइट फीवर में गाने फिल्मी, ज्यादा से ज्यादा फिल्मी सॉन्ग्स जो फिर से गाया गया है, सजाया गया है, आप तक मैं पेश किया करते हैं। और एपर्स के नाम जो लोग ऐप करते हैं स्टूडियो में, ये कश उठाते हैं ऐप करने के लिए, हाय हेलो कहने के लिए, तो उन सभी के नाम से भी सैटरडे नाइट फीवर में उनके नाम से गीत मैं चलाता हूँ। और अगर आप ऐप नहीं करेंगे तो गीत हम चलाएंगे यूं ही, क्योंकि प्रोग्राम तो मुझे बनाना है, सजाना है ना। एंड दैट्स आल्सो ऑन द सेम 020-363-0808 020-363-0808। एक गीत हो जाए और उसके बाद में एक सूचना है जो आपको हमें बताना है। अम्स्टर्डम शहर में आईफी जहांगीर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आईफी जी हमेशा सुनते हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, पावर करते हैं। आईफी डंकी वेल, शुक्रिया करम मेहरबानी आपके सपोर्ट के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और ये नगमा जो आपके नाम करता हूँ।

सीने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो जैन की आवाज, दैट वाज वेल अ खावा आवर uit 1994. मेरे प्यारे सुनोलो, 7 मिनट बाकी हैं सरे 9 बजने में, 7 मिनट फॉर द क्लॉक फ्रॉम 3:30। एपर्स के लिए, जिन लोगों ने ये कश उठाए ऐप करने के लिए, उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं। और अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हम चलाने जा रहे हैं, और वो भी स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी के लिए, जो हमेशा भी प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। दंकीवाल स्वाग फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट, सोसो लोबी तू जाने है तो। मैं एक नगमा सुबी का गाया हुआ एक शम्मी कपूर का एक मेटली है, मैशअप है, स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह के नाम आयुत सुतमेर।

या या या दत वास सुबी मेरे प्यारे सुनने वालों, सुबी शमी कपूर का एक मैशअप गाकर सुनाए हैं और सुबी का ये नगमा रिलीज हुआ फोकस में हरखन से यूनी आप तक हमने पेश किया। अब एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, वे बैक वे बैक वे बैक जब तुलों सब और जवान रहले। आशीष बक्स मीट्स मस्ताना ये एल्बम से गीत निकालेंगे और आशीष बक्स जी की आवाज में एक खूबसूरत गीत रफी साहब जी का जो इन्होंने फिर से गाए थे सजाए थे। ब्रेरा का मनेर एन मफराव बिहारी जी के नाम करेंगे। थैंक यू लिवेल फॉर अटाउसम चून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेल और आप सभी भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब भी आप सभी को मौका मिलता है आप ही ऐप करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए मफरान मनेर बिहारी जी। आशीष बक्स का ये नगमा आपके नाम दारिन ब्रेरा।

दंड खावनार रोटरडम स्कीडम, जहां पर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रोहिणी जी, रोहिणी कल्लू जी, डंकीवेल आपके आपके लिए एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, और आप हमेशा भी ऐप करते हैं, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद डंकीवेल। विशाल क्रू सब बोले दी बकरा दी नीदलैंड से होंगे जो ने इतना मोह हिंदुस्तानी गाना गावे, एंड दैट क्लब एक विशाल मे गमाक टाइडेंस मैन वैकेंसी अफलोप यार इन सुरीनाम, एंड विशाल एक केन माल हे लंग फॉर यू आर ओक हेल फाक ओप खतरी, विशाल इज गोन एन टॉपर, लीफ फ्राउ एंड लीफ किंच। विशाल की आवाज में पेश करता हूं गीत रोहिणी कल्लू जी के लिए आयत स्कीडम रोटरडम।

Mary Perry is in allo. Kya nagma, kya was. En hij heeft het gedaan hoor. Prachtig en mooi begeleid ook door Sabroso. Michel Krul. Keep it up. En blijf vooral zingen. मेरे प्यारे सुनो मैं देखता हूँ घर की तरफ तो 11 मिनट तक गुजर चुके हैं और वो भी सारे 9 बजकर वीकेंड है शनिवार है सभी मंगन में है एंजॉय कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ अगर आप सभी मंगन में है एंजॉय कर रहे हैं तो एक और ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग क्यों ना पेश किया जाए ये शनिवार और मैं देखता हूँ हमारी लिस्ट पर नाम है अम्सदम सिंड्रोम का प्रभा प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए एम प्रभा जी आप ही हमेशा ऐप करते हैं दिल से थैंक यू वेल फॉर योर सपोर्ट एंजॉय आज बाकी ना बताई ले कौन सी बनाई ले हरदम बतावे है वेल हम आपको बता दें कि एक ईद ही लेकर बारस Bara met chutney. En vandaag ben ik helemaal alleen in de studio. Maar dat is niet minder gezellig. Want toen jij in mijn huna. En waar ik ben. Dan heb ik niemand anders nodig. Achi music ho. Ujala radio ho. Aur aap sabhi ka saath ho. To aur ka liye. Prabhaji. Sagar Malik, one of the finest singers hamari Holland Kinder. मैं ये गीत आपके नाम करता हूँ एंड इट इज हील माल फेयर सन पेयर्स और कहाँ है ओ ही है एंजॉय योर वीकेंड

दिल कहता है चल उनसे मिल, और मिलते ही कदम रुक जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आसिकनीत फरखीत कुमार सानू का एक नगमा, और सागर मालिक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड किंगडम में, इन्होंने ये गीत फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक हमने पेश किया है बहुत प्रेम और प्यार के साथ। मेरे प्यारे सुनवाला, आप सभी को तो मालूम है कि वातरालामाल खात खबर ओवर टू वीक सैटरडे और संडे 29 और 30 अगस्त को उजाला रेडियोस का इंडोर समर एडिशन ब्रासा फेस्ट जो रचाया जा रहा है। दनाक शहर में ब्रासा फेस्ट 2026 जिया इवेंट सेंटर में, वक्त पर आप अपना टिकटे खरीद ले, want de tickets zijn nog €8,50 als ik het niet vergis. En het is de tweede fase. Als je fase je nikkel jijgt, dan gaan de kaarten echt duurder zijn. Oh, de Brasa Fest. Ik barca gezellige Hindustanse event. Oh, Isalka. Kana, Pina, Music, Dance, Shopping, Market, Aapka Culture, पलवार का एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड फाइव्स और बीट, सभी सैटरडे 29 एन सोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में, वक्त पर आप अपना टिकटे खरीद ले लेना। तरह तरह की म्यूजिक इंफॉर्मेशन और डांस ग्रुप आर्टिस्ट जो भी आप नाम लेंगे हमारी इस सीन के अंडर में सभी मौजूद हैं। इन वीकेंड twee dagen GIA Events Center Den Haag शहर में Brasa Fest, फूड हॉल भी रहेंगे, लॉन्च करने के लिए भी हॉल है, लगभग 10,000 आदमी आ सकते हैं। टिकटे के लिए आप चेक करें www.brasafest.nl। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों मैं पेश करने जा रहा हूं, और इस घंटे का आखिरी गीत जो है दनाख में तो रहती है लेकिन इस वक्त दनाख में नहीं, हमारे प्रिय सभी के प्रिय सुरिनाम में है और एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह लोग कहां कहां जहां जहां भी जाते हैं उजाला रेडियो अपने साथ लिए जाते हैं। एन अतिथिलक प्रख्तक हम तोर तो मिक डंकीवेल फॉर ये एपिय एन ये खनित फन सुरिनाम मा ओक नतुलक van UR en van Saturday Night Fever. Bahout, bahout, dankjewel aapke appke liye. Ye nagma van een Surinaams band hoor, The Good Vibes. Aapke naam karta hoon Mika. Enjoy.

unii tu cacră de lemn. Natürlich Burma nu a gusait. Or Burman de gusait ai? Da ca hui. Tuni, thank you well, altijd leuk. Ab je epkerte hè. Altijd lol met jou. Thank you well for je epje. Enjoy your weekend. Or tu jane toch. Altijd blijven lachen. आपकी बाहर गीत जो हम चलाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों दूर रहते हैं वो बहुत दूर लेकिन हमेशा सुनते हैं और जब भी सुनते हैं हमेशा एप भी करते हैं एंड दन गाउ हेलेमाल फेर वेग ओवर द अटलांटिक ओशियन नार इट लैंड फ्रॉम ट्रंप नो या इट इज नीट सेइंग लैंड मार हुआ राज कर रहे हैं इस वक्त वी गो ना टेक्सास द स्टेट टेक्सास यहां पर अजय और सुनीता अपने इति प्रेमियों के साथ जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर दार इज इट नोग मिडाग ऑफ ओखतेंड तो गुडमोर्ग ऑफ गुडमिडाग बेहद खुशी है हम कि आप सभी भी वहां भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अजय और सुनीता जी टेक्सास यूएस ऑफ ए एक गीत हमने तैयार करके रखा है हमारे प्रिय सुरिनाम का एक फरमाइश द स्वीट मेलोडीज इनका एक नया रिलीज मैं करता हूं आप सभी के नाम वहां तुमसे मिलना और प्रिया

शहडोल बिंद्राबन मेरे प्यारे जिन्हें वालों, जब किसी की तरफ ये दिल रुकने लगे और बात सॉरी झुकने लगे और बात आकर जुआ तक रुकने लगे, तो बस आंखों ही आंखों में बात होते हैं। ब्यूटीफुल इनकी आवाज में ये गीत गाया गया है। यह है यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको इतला दे हम कि 11 बजे के बाद हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ये प्रोग्राम सजाएंगे रात्रि में 12 बजे तक। लास्ट यूर्च इस सोल यूर्च आपको मालूम रहे। जेनी यहतन एपी खस्तूर्त, दंकीवाल जेनी, एंड नेचुरली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत देश का इंडिपेंडेंस डे है। खिस्तर वास फ्रॉम पाकिस्तान, आज भारत देश का है, तो सभी प्रिय सुनने वालों को हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जेनी के नाम मैं करता हूँ अगले गीत, सुबह गाएंगे और साथ में देंगे बीबी दंकीवाल जेनी।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। या इधर इन वेल दैट है दैट यू हिल फिल फनी पर्सन आउट, तुम मुझे जितना प्यार दे सकते हो दे, लेकिन वापसी में उतना ही प्यार हम उन्हें देते हैं ये भी सोचना पड़ता है। प्यार के भूखे हैं हम सभी, सभी चाहते हैं प्यार। While there is ellend genoeg op deze wereld, तो अगर थोड़ा सा प्यार हम एक दूजे के साथ करें तो कितनी खूबसूरत होंगे ये दुनिया। सत्या जी आप भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अम्सटरडम में। सत्या जी नालांगत आई तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो बेहद खुशी है हम, धन्यवाद आपके आपके लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मलिक, इनकी आवाज में मैं गीत सत्या के नाम करता हूँ। सत्या जी एट अम्सटरडम।

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड कन्नड़ में सागर मालिक जी। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त कुछ ऐसा है कि इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे और उस आखिरी गीत के बाद 11 बजे के ब्रेक आप सुनेंगे और ब्रेक के उस पार नतुलक आप सभी से फिर हम मिलेंगे, पेश करेंगे हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा और जिसमें अली मसूल्स टू द क्लॉक फन मिडनाइट 12 यू। एक अब इन लास्ट नाम हीरो ऑफ माय लाइफ और वो है टीचा ऐताल मेरा। टीचा जी ऐताल मेरा थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। ये बैन अल हेरलक रिलैक्स एन ये खनित फन उजाला रेडियो एन नेचुरलक फन सैटरडे नाइट फीवर खास करके द लोकल्स प्रोग्राम जो हम पेश कर रहे हैं। रतन आपको फिर एक बार स्वागत करते हैं और डंकी वाल कहते हैं चून करने के लिए। दिस इज फॉर योर टीचर अल्मेरा।

मिस्टर रे, मेरे प्यारे जिन वालों, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। और इस गीत के बाद यूनियर फ्लेक्स की आवाज में कि मैं अगर कहूं, रिमेंबर दिस इज यू आर, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए www.ujala.nl।

0: यूनियर फ्लेक्स मेरे प्यारे सुनने वालों, इनकी आवाज में
1: मेरे मन को किया तू।
0: मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: क्या इशारा
0: उजाला रेडियो पर द ब्यूटीफुल सोल्स।

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, शिवा लखन्ना मेरे प्यारे सुन वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं वखाना फरमासी न्यू ईगल्स और रविंद्र दशरथ जी की आवाज में। अगले गीत हम पेश करेंगे और इसे हम नाम करेंगे दनहल्दर का इल्स राम दयाल जी के लिए, जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। राम राम सीताराम इल्स जी एंड धनकी वाला आपके आपके लिए। ये गीत रविंद्र दशरथ का गाया हुआ इल्स के नाम इल्स राम दयाल एट दनहल्दर।

Ja, dit is Ravindra's Ritme hier op Jaris en Olo. Met de formatie The New Eagles. Bilkul vers van de pers. घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी सरे 11 बजकर 8 मिनट तो ओवर द क्लॉक फ्रॉम 11:30 सागर मालिक वंस अगेन प्रोग्राम में पेश हम करेंगे ये नगमा के साथ ओक फेयर्स फॉर द पेयर्स पेश करता हूं जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले हैं

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनो वालो, जीवन के दिन में छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनो वालो, और अब की बार गीत एक हम चलाएंगे अपने एक भैया के लिए। जब से हम हॉलैंड में हैं तभी से ये मेरे बड़े भाई हैं। एंड अफ्लोप वुंसदाग 12 तारीख अगस्त को इस है ऑनफरवाह उफलीर, तो उनके याद में मेरी नजर में एक गीत आए हैं, तो मैंने सोचा प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्यों ना लकी सिंह का गाया हुआ ये नगमा उस भैया के नाम करूं, जिसका नाम है विजय तुकुन, फलेर विजय कुमार तुकुन। Till we meet again, Rutsach.

लकी सिंह की आवाज मेरे प्यारे सुनो, अपने उस बड़े भाई के लिए विजय कुमार टुकुन के लिए, जो जब से मैं हॉलैंड में हूं हम साथ बड़े हुए और बीते हुए बुधवार बहुत ही कम उम्र में वो साथ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम उनसे मिलेंगे जरूर और उनकी याद में लकी सिंह का गाया हुआ ये नगमा हमने पेश किया है। वखानार अर्नोल्ड मलाहे, रिमेंबर दिस इज सैटरडे नाइट फीवर, हियर ऑन यू आर।

ארנולד מלאהי, כי אבא זמרי פרס אינו עלו. हाजी और वो वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं सेवा में। पांच घंटे का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं किस रफ्तार से हमने सजाए बनाए हैं और वक्त निकला गया है और जल्दी निकला गया है क्योंकि आपने भरपूर भी साथ दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दंकीवाल, शुक्रिया। ये प्रोग्राम अगले हफ्ते 22 तारीख 22 अगस्त को फिर हम सजाएंगे सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यू आर। मरना चुलक मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में जबकि सेवा करने चले आएंगे बुधवार के रात्रि को लतिस निहंतीन अगस्त लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6 से 9 बजे हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। एंड ऑन द डखावंत, हाँ जी, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, 20 तारीख अगस्त को भी आप सभी के सेवा में हम हाजिर रहेंगे यही स्टूडियो रोटरडम से, और वो भी 8 बजे से 11 बजे जबकि हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम दिल की आवाज। तो यही उम्मीद और आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की आप सभी भरपूर मेरा साथ देंगे। आज जिस तरह से हमने प्रोग्राम को सजाए हैं, बनाए हैं, उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप सभी ने एंजॉय की है, मजा ली है। कोशिश तो हमारा लगातार था आपका दिल बहलाने के लिए, तो बस उम्मीद करता हूं कि इसमें हम कामयाब हुए हैं। आज के लिए जाने से पहले बस आप सभी प्रिय सुनने वालों से यही कहना चाहूंगा कि रहा ये जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

ताले ताग धुम ताग ताले ताग जमे ताग धाला आम ताग धुगे ताग ताले के नतु ताग नाग ताग धुम ताग नाग नाग धुम ताग नाग नाग धुम ताग नाग नाग जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के ने ताग धुम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के ने जम

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।